0: ते ना कोई मरा
1: मैं कवरा एच दे हूँ
0: आता हुआ ना ते ने वो याद ने
1: मैं कहा रा तो ता तो चुकू
0: क्यों रो माय डार्लिंग